0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव का एक दूसरे के प्रति चिंता हमारे मानवीय होने के गुण को अभिव्यक्त करता है। अपनी सजीव मानवता के कारण हम एक दूसरे के संग उनके दुख सुख अच्छी बुरी परिस्थितियों में सहभागी होती और जरूरत के अनुरूप अपने कार्यों को करते हैं, जिससे हम एक दूसरे के निकट रहने वालों की भलाई करते हों। हमारी मानवीय संवेदनशीलता हमें ईश्वर के सारे श्रेष्ठ प्राणियों में एक अलग पहचान प्रदान करती है, जहां हम सारी सृष्टि के सिरमौर बनते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 23वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सभी पाठों में हम मानवीय जीवन के सार की अभिव्यक्ति को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि हम अपने मानवीय होने की अभिव्यक्ति को दूसरों के संग किस रूप में व्यक्त करते हैं। क्या हम में व्याप्त ईश्वर से मिली अच्छाइयां दूसरों की अच्छाई और भलाई में व्यक्त होती हैं? क्या हम अपने मानवीय प्रकृति के अनुरूप दूसरों के हित का ख्याल रखते हुए अपने दैनिक जीवन के कार्यों का निष्पादन करते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में हृदय के अपने भंडार से अच्छी चीजें निकाल कर दूसरों को देने में मदद करे, जिससे हमारे द्वारा ईश्वरीय जीवन का संचार जरूरतमंद लोगों के लिए हो सके। श्रोताओ, नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिए गए आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी को इसराइल के घराने हेतु एक पहरेदार नियुक्त करते हैं। एक पहरेदार का कार्य लोगों को सब समय सतर्क और सजग रहने का आह्वान करना है। वह उन्हें अनहोनियों के प्रति पहले से तैयार रहने को घोषित करता है। ईश्वर नबी को एक पहरेदार स्वरूप नियुक्त करते हैं, जिससे वे चुनी हुई प्रजा को पापों और बुराइयों से बचे रहने का आह्वान करें, उन्हें चुनौती प्रदान करें, क्योंकि पाप और बुराई हमें ईश्वर से दूर अनंत मृत्यु की ओर अग्रसर करती है। यहां हम ईश्वर के प्रति नबी के निष्ठावान बने रहने की बात सुनते हैं, जो ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा पर भी चिंतन करने की चुनौती प्रदान करता है। ईश्वर ने हमें जीवन प्रदान करते हुए अपने मुक्तिदायी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने हमें नबी के रूप में नियुक्त किया है, जिससे हम पाप और मृत्यु से अपने को मिले मुक्तिदायी जीवन को दूसरों के संग साझा करें। हम दूसरों को पाप में गिरने से बचाएं, क्योंकि हम स्वयं पाप और उसके कारण होने वाली मृत्यु से बचाए गए हैं। श्रोताओं, यह हमें रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ से संयुक्त करता है, जहां हम भ्रातृत्वमय प्रेम के ऋण की चर्चा सुनते हैं। यह हमें दूसरों को अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने की बात कहता है। मानवीय प्रेम एक तरह से ऋण की भांति है, जिसे हम दूसरों के लिए देते हैं। यह अपने को बिना सूद की चाह रखे दूसरों के लिए व्यय करना है, दूसरों के हित का ख्याल रखते हुए अपने को देना, जिससे पाने वाले अपने जीवन में आनंद और खुशी का अनुभव करें, जो उनके लिए जीवन में सर्वांगिक विकास का कारण बने। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया, हमें पड़ोसी प्रेम के एक दूसरे महत्वपूर्ण आयाम को गहरी रूप में व्यक्त करता है, जिसे हम भ्रातृत्व में सुधार स्वरूप पाते हैं। किसी के लिए हमारा यह भ्रातृत्व में सुधार हमारे लिए उस व्यक्ति के लिए एक प्रेम की निशानी है, जो हमारे हृदय में उसके प्रति एक नेक चाह को व्यक्त करता है। लेकिन यह बहुधा आज की परिस्थिति में गलत मनोभावों से लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुधार की जगह हम एक बिगाड़ को पाते हैं। यही कारण है कि हम अपने अजीज मित्रों के संबंध में भी केवल मीठी मीठी बातें तक ही अपने को सीमित कर लेते हैं, जबकि उनकी कमजोरियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराना हमारे लिए कठिन और भयजनक लगता है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें अपने समाज के ताने बाने को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की चुनौती प्रस्तुत करते हैं। गलती और कोई अपराध कोई भी व्यक्ति से किसी भी परिस्थिति में सहज हो सकता है, जो हमारे लिए मानवीय कमजोरी को व्यक्त करता है। लेकिन हम उस गलती या अपराध के सुधार हेतु किस तरह की पहल अपनी ओर से करते हैं? यदि हम अपने भाई बहनों की गलतियों के सुधार हेतु अपनी ओर से पहल नहीं करते, तो उनकी गलतियों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है और हम उनके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। श्रोताओं, आज यीशु हमें अपने बीच में होने वाली गलतियों के सुधार हेतु तीन स्तर के सुझाव प्रस्तुत करते हैं। पहला, गलती करने वाले को व्यक्तिगत रूप में समझाना। दूसरा, उसे दो या तीन के संग मिलकर गलतियों को देखने और अपने में सुधार लाने को मदद करना। और सुधार ना होने पर तीसरे स्तर में उसे कलीसिया के सामने प्रस्तुत करना और अंततः सामाजिक रूप में अपराधी के रूप में देखना। श्रोताओं, आज के प्रभु वचन का सार, ईश्वरीय संतानों के रूप में हमें एक दूसरे की चिंता करते हुए प्रेम के सूत्र में सदैव बंधे रहने का आह्वान करता है। यह हमें अपने समुदाय में प्रेम और एकता में भ्रातृत्वपूर्ण संबंध बनाए रखने का संदेश देता है, जिसके ताने बाने को सुरक्षित रखने हेतु स्वयं उन्होंने मानव बनना स्वीकार किया। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने परिवारों और समुदायों को सुरक्षित रखने में मदद करना सिखाएं, जहां हम दूसरों की सच्ची चिंता करते हुए ख्रिस्तीय प्रेम में एक दूसरे के संग सदैव संयुक्त रह सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत समाचार। पोप लियो 14वें ने शनिवार को वैटिकन में एकांत मठवासी धर्म बहनों का स्वागत किया और उनकी उपस्थिति को ईश्वर की कृपा का एक चमकदार साक्ष्य बतलाया, जो मानव के दिल में उनके चेहरे को खोजने और उन पर चिंतन करने की इच्छा उत्पन्न करता है। पौत्रतम संस्कार की अनवरत आराधना की धर्म बहने, जिन्हें सैक्रमेंटाइन धर्म बहने भी कहा जाता है, उनके धर्म संघ की स्थापना 1807 ईस्वी में रोम में शरीर धारण की धन्या मरिया मगदलेना के द्वारा हुई थी। एकांत मठवासी धर्म बहने दिन और रात पौत्रतम संस्कार की आराधना के लिए समर्पित हैं। पोप से मुलाकात करने वाली धर्म बहने पौत्र आत्मा के संघ के सदस्य हैं। यह लगभग 30 मठों का एक दल है, जिनमें से अधिकांश मेक्सिको में है। धर्म बहने पौत्र आत्मा के संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर इन दिनों इटली के तीर्थ यात्रा पर हैं। पोप ने कहा, ईश्वर के चेहरे की यह निरंतर खोज जो मठवासी जीवन की विशेषता है, आपकी बुलाहट में एक सूक्ष्म फर्क पर आधारित है। यह पूरी तरह ईश्वर की निरंतर एवं मौन आराधना के लिए समर्पित जीवन है, जो रोटी बन गए और जो हमें एक शरीर बनाने के लिए वेदी के बलिदान में उनके साथ एक होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसा कि संत अगस्तीन अपने कलीसिया के नए सदस्यों को समझाते हैं, वेदी पर रोटी और दाखरस मसीह में विश्वासों की एकता का संस्कार है। संत पापा ने मठवासी धर्म बहनों से कहा कि वे अपनी संस्थापिका द्वारा प्राप्त कैरिज्म के अनुरूप प्रार्थना और काम के धागों से मठ में यूखारिस्ते आराधना और भाईचारा के साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाए गए हैं। पौत्र आत्मा के संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर पोप ने कहा, यह कृपा का समय जिसको वे अनंत शहर में और उन जगहों पर तीर्थयात्रियों के रूप में अनुभव कर रहे हैं जहां धर्म संघ की शुरुआत हुई थी, उन्हें वे नवीनीकृत करें और मजबूत बनाएं। संत पापा ने उन्हें संस्थापिका ख्रिस्त के शरीर धारण की धन्या मरिया मगदलेना के आदर्शों पर चलने का प्रोत्साहन दिया, ताकि वे अपने समर्पण को नवीनीकृत आशा और पौत्रता की चाह के साथ जीते रहें। उन्होंने कहा, याद रखें, सुसमाचार के पुराने और हरदम नवीन रहने वाले प्रज्ञा के प्रति निष्ठा ही उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है जो पौत्र आत्मा के मार्गदर्शन में खुद को ईश्वर और पड़ोसी से प्यार करने के लिए समर्पित करते हैं। अंत में संत पापा ने उन्हें ग्वादालूपे की माता मरियम की सुरक्षा में सुपोर्द किया तथा उन पर प्रभु से आशीर्वाद की कामना की। विद्वान, राजनेता, उद्यमी, धार्मिक नेता, कार्यकर्ता और युवा इंडोनेशिया में एकत्रित हैं ताकि हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर चिंतन कर सकें, और यह चुनौती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानव प्रतिष्ठा, भाईचारे और शांति की सेवा में कैसे लगाया जा सके। स्कोलास्टिक्स, जो वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क और मिलकर काम करने की जगहें हैं जो स्कोलास और करंतस आंदोलन द्वारा यूनिवर्सिटी एवं रिसर्चर को जोड़ती हैं, इस हफ्ते इंडोनेशिया में अपने 11वीं इंटरनेशनल कांग्रेस की मेजबानी कर रही हैं। 4 से 6 सितंबर तक चलने वाली 3 दिनों की कांग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मानव संवेदना के सवाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
1: जिबूती के धर्माध्यक्ष और सोमालिया के प्रेरितिक प्रशासक धर्माध्यक्ष जमाल डेब्स ने पवित्र भूमि में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक दबाव बनाने की अपील की, ताकि वे सम्मान, आजादी और सुरक्षा के साथ अपने देश में रह सकें। अरब इलाकों के लैटिन धर्माध्यक्षों के साथ शुक्रवार 4 सितंबर को संत पापा लियो 14वें से मिलने के बाद रोम में वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि डर और हिंसा फिलिस्तीनियों को उस जमीन को छोड़ने पर मजबूर कर रही है जहां ख्रिस्तीय कलीसिया की शुरुआती दिनों से रह रहे हैं। धर्माध्यक्ष डेब्स के लिए पवित्र भूमि में लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक दावों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। वे कहते हैं कि इसके केंद्र में यह है कि क्या लोग अपने देश में रह सकते हैं और वहां गरिमा, सुरक्षा और आज़ादी के साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी ख्रिस्तीय व्यापक फिलिस्तीनी आबादी के साथ पीड़ित है, लेकिन ख्रिस्तीय गांवों और कस्बों पर हाल के हमलों ने एक नया आयाम जोड़ा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ख्रिस्तीय अन्य सभी फिलिस्तीनियों की तरह कब्जे के तहत पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का मकसद डर पैदा करना और अंत में लोगों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करना है। انہوں نے کلیسیہ اور انتراشٹریہ سمودائے سے اپیل کی، ہمیں کلیسیاؤں کی ایکتا، انتراشٹریہ سمودائے کی ایکتا کی ضرورت ہے اور دباؤ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ رک جائے۔ دھرمادھیکش ڈیبز کے لیے سنت پاپا لیو 14 کے ساتھ میٹنگ کی سب سے ضروری باتوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہیں سیدھے ان سے یہ سننے کو ملا کہ اس علاقے میں رہنے والے کرسچن اکیلے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں واپس جانے اور اپنے ساتھ سوسماچار اور اپنے لوگوں کے لیے امید لے کر چلنے کا پروتساہن دیا۔ ادھر نیپال میں ایک ہفتے سے زیادہ سمے بعد مرنے والوں کی سنکھیا لگ بھگ 1,300 ہو گئی ہے اور 5,600 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں اور قریب 900 مزدور ابھی بھی ہائیڈرو الیکٹرک ٹنل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نیپالی سینا نے بتایا کہ آج شنیوار کو اپر تریشولی پاور پروجیکٹ کے آڈٹ 4 سرنگ میں ایک چینی کرمچاری کو بچا لیا گیا۔ نیپال سینا نے بتایا کہ وہ 225 میٹر لمبی سرنگ کے اندر پائے گئے۔ شکروار 4 ستمبر کو راسوا گڑی ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ کی انڈر گراؤنڈ ٹنل سے 2 لوگوں کو زندہ باہر نکالا گیا۔ کاٹھمانڈو ہاسپٹل لے جانے سے پہلے اس ویکتی نے پورے بھروسے کے ساتھ کہا کہ وہاں اور بھی لوگ زندہ ہیں، ابھی تک صرف ایک باڈی ملی ہے، پھر بھی اس ایک ٹنل سے کم 39 اور مزدوروں کو بچانے کی امید ہے۔ اب تک 10,000 سے ادھک لوگوں کو بچایا گیا ہے، جن میں 252 ودیشی ناگرک شامل ہیں۔ جیسے جیسے تباہ ہوئے گاؤں میں زندہ لوگوں کے ملنے کی امید کم ہوتی جا رہی ہے، سینکڑوں ہندو پریواروں نے پرتیکاتمک انتم سنسکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ پجاری پوال کی مورتیاں رکھتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں۔ یہ رسم ان کے لاپتہ رشتہ داروں کی آتما کو شانتی دینے کی امید میں کی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ واٹیکن ریڈیو کا ہندی پرسارن سماپت ہوا۔ نمسکار۔

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव का एक दूसरे के प्रति चिंता हमारे मानवीय होने के गुण को अभिव्यक्त करता है। अपनी सजीव मानवता के कारण हम एक दूसरे के संग उनके दुख सुख अच्छी बुरी परिस्थितियों में सहभागी होती और जरूरत के अनुरूप अपने कार्यों को करते हैं, जिससे हम एक दूसरे के निकट रहने वालों की भलाई करते हों। हमारी मानवीय संवेदनशीलता हमें ईश्वर के सारे श्रेष्ठ प्राणियों में एक अलग पहचान प्रदान करती है, जहां हम सारे सृष्टि के सिरमौर बनते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 23वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सभी पाठों में हम मानवीय जीवन के सार की अभिव्यक्ति को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि हम अपने मानवीय होने की अभिव्यक्ति को दूसरों के संग किस रूप में व्यक्त करते हैं। क्या हम में व्याप्त ईश्वर से मिली अच्छाइयां दूसरों की अच्छाई और भलाई में व्यक्त होती हैं? क्या हम अपने मानवीय प्रकृति के अनुरूप दूसरों के हित का ख्याल रखते हुए अपने दैनिक जीवन के कार्यों का निष्पादन करते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में हृदय के अपने भंडार से अच्छी चीजें निकाल कर दूसरों को देने में मदद करे, जिससे हमारे द्वारा ईश्वरीय जीवन का संचार जरूरतमंद लोगों के लिए हो सके। श्रोताओं, नबी एजिकियल के ग्रंथ से लिए गए आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी को इसराइल के घर आने हेतु एक पहरेदार नियुक्त करते हैं। एक पहरेदार का कार्य लोगों को सब समय सतर्क और सजग रहने का आह्वान करना है। वह उन्हें अनहोनियों के प्रति पहले से तैयार रहने को घोषित करता है। ईश्वर नबी को एक पहरेदार स्वरूप नियुक्त करते हैं, जिससे वे चुनी हुई प्रजा को पापों और बुराइयों से बचे रहने का आह्वान करें, उन्हें चुनौती प्रदान करें, क्योंकि पाप और बुराई हमें ईश्वर से दूर अनंत मृत्यु की ओर अग्रसर करती है। यहाँ हम ईश्वर के प्रति नबी के निष्ठावान बने रहने की बात सुनते हैं, जो ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा पर भी चिंतन करने की चुनौती प्रदान करता है। ईश्वर ने हमें जीवन प्रदान करते हुए अपने मुक्तिदायी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने हमें नबी के रूप में नियुक्त किया है, जिससे हम पाप और मृत्यु से अपने को मिले मुक्तिदायी जीवन को दूसरों के संग साझा करें। हम दूसरों को पाप में गिरने से बचाएं, क्योंकि हम स्वयं पाप और उसके कारण होने वाली मृत्यु से बचाए गए हैं। श्रोताओं, यह हमें रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ से संयुक्त करता है, जहां हम भ्रातृत्वमय प्रेम के ऋण की चर्चा सुनते हैं। यह हमें दूसरों को अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने की बात कहता है। मानवीय प्रेम एक तरह से ऋण की भांति है, जिसे हम दूसरों के लिए देते हैं। यह अपने को बिना सूद की चाह रखे दूसरों के लिए व्यय करना है, दूसरों के हित का ख्याल रखते हुए अपने को देना, जिससे पाने वाले अपने जीवन में आनंद और खुशी का अनुभव करें, जो उनके लिए जीवन में सर्वांगिक विकास का कारण बने। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया, हमें पड़ोसी प्रेम के एक दूसरे महत्वपूर्ण आयाम को गहरी रूप में व्यक्त करता है, जिसे हम भ्रातृत्व में सुधार स्वरूप पाते हैं। किसी के लिए हमारा यह भ्रातृत्व में सुधार हमारे लिए उस व्यक्ति के लिए एक प्रेम की निशानी है, जो हमारे हृदय में उसके प्रति एक नेक चाह को व्यक्त करता है। लेकिन यह बहुधा आज की परिस्थिति में गलत मनोभावों से लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुधार की जगह हम एक बिगाड़ को पाते हैं। यही कारण है कि हम अपने अजीज मित्रों के संबंध में भी केवल मीठी मीठी बातें तक ही अपने को सीमित कर लेते हैं, जबकि उनकी कमजोरियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराना हमारे लिए कठिन और भयजनक लगता है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें अपने समाज के ताने बाने को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की चुनौती प्रस्तुत करते हैं। गलती और कोई अपराध कोई भी व्यक्ति से किसी भी परिस्थिति में सहज हो सकता है, जो हमारे लिए मानवीय कमजोरी को व्यक्त करता है। लेकिन हम उस गलती या अपराध के सुधार हेतु किस तरह की पहल अपनी ओर से करते हैं? यदि हम अपने भाई बहनों की गलतियों के सुधार हेतु अपनी ओर से पहल नहीं करते, तो उनकी गलतियों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है और हम उनके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। श्रोताओं, आज यीशु हमें अपने बीच में होने वाली गलतियों के सुधार हेतु तीन स्तर के सुझाव प्रस्तुत करते हैं। पहला, गलती करने वाले को व्यक्तिगत रूप में समझाना। दूसरा, उसे दो या तीन के संग मिलकर गलतियों को देखने और अपने में सुधार लाने को मदद करना। और सुधार ना होने पर तीसरे स्तर में उसे कलीसिया के सामने प्रस्तुत करना और अंततः सामाजिक रूप में अपराधी के रूप में देखना। श्रोताओं, आज के प्रभु वचन का सार, ईश्वरीय संतानों के रूप में हमें एक दूसरे की चिंता करते हुए प्रेम के सूत्र में सदैव बंधे रहने का आह्वान करता है। यह हमें अपने समुदाय में प्रेम और एकता में भ्रातृत्वपूर्ण संबंध बनाए रखने का संदेश देता है, जिसके ताने बाने को सुरक्षित रखने हेतु स्वयं उन्होंने मानव बनना स्वीकार किया। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने परिवारों और समुदायों को सुरक्षित रखने में मदद करना सिखाएं, जहां हम दूसरों की सच्ची चिंता करते हुए ख्रिस्तीय प्रेम में एक दूसरे के संग सदैव संयुक्त रह सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत समाचार। पोप लियो 14वें ने शनिवार को वैटिकन में एकांत मठवासी धर्म बहनों का स्वागत किया और उनकी उपस्थिति को ईश्वर की कृपा का एक चमकदार साक्ष्य बतलाया, जो मानव के दिल में उनके चेहरे को खोजने और उन पर चिंतन करने की इच्छा उत्पन्न करता है। पौत्रतम संस्कार की अनवरत आराधना की धर्म बहने, जिन्हें सैक्रामेंटाइन धर्म बहने भी कहा जाता है, उनके धर्म संघ की स्थापना 1807 ईस्वी में रोम में शरीर धारण की धन्या मरियम मगदलीना के द्वारा हुई थी। एकांत मठवासी धर्म बहने दिन और रात पौत्रतम संस्कार की आराधना के लिए समर्पित हैं। पोप से मुलाकात करने वाली धर्म बहने पौत्र आत्मा के संघ के सदस्य हैं। यह लगभग 30 मठों का एक दल है, जिनमें से अधिकांश मेक्सिको में है। धर्म बहने पौत्र आत्मा के संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर इन दिनों इटली की तीर्थ यात्रा पर हैं। पोप ने कहा, ईश्वर के चेहरे की यह निरंतर खोज जो मठवासी जीवन की विशेषता है, आपकी बुलाहट में एक सूक्ष्म फर्क पर आधारित है। यह पूरी तरह ईश्वर की निरंतर एवं मौन आराधना के लिए समर्पित जीवन है, जो रोटी बन गए और जो हमें एक शरीर बनाने के लिए वेदी के बलिदान में उनके साथ एक होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसा कि संत अगस्तीन अपने कलीसिया के नए सदस्यों को समझाते हैं, वेदी पर रोटी और दाखरस मसीह में विश्वासियों की एकता का संस्कार है। संत पापा ने मठवासी धर्म बहनों से कहा कि वे अपनी संस्थापिका द्वारा प्राप्त कैरिज्म के अनुरूप प्रार्थना और काम के धागों से मठ में यूखारिस्ते आराधना और भाईचारा के साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाए गए हैं। पौत्र आत्मा के संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर पोप ने कहा, यह कृपा का समय जिसको वे अनंत शहर में और उन जगहों पर तीर्थयात्रियों के रूप में अनुभव कर रहे हैं जहां धम्म संघ की शुरुआत हुई थी, उन्हें वे नवीनीकृत करें और मजबूत बनाएं। संत पापा ने उन्हें संस्थापिका ख्रिस्त के शरीर धारण की धन्या मरियम मगदलीना के आदर्शों पर चलने का प्रोत्साहन दिया, ताकि वे अपने समर्पण को नवीनीकृत आशा और पौत्रता की चाह के साथ जीते रहें। उन्होंने कहा, याद रखें, सुसमाचार के पुराने और हरदम नवीन रहने वाले प्रज्ञा के प्रति निष्ठा ही उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है जो पौत्र आत्मा के मार्गदर्शन में खुद को ईश्वर और पड़ोसी से प्यार करने के लिए समर्पित करते हैं। अंत में संत पापा ने उन्हें ग्वादालोपे की माता मरियम की सुरक्षा में सुपुर्द किया तथा उन पर प्रभु से आशीर्वाद की कामना की। विद्वान, राजनेता, उद्यमी, धार्मिक नेता, कार्यकर्ता और युवा इंडोनेशिया में एकत्रित हैं ताकि हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर चिंतन कर सकें, और यह चुनौती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानव प्रतिष्ठा, भाईचारे और शांति की सेवा में कैसे लगाया जा सके। स्कोलास्टिक्स, जो वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क और मिलकर काम करने की जगहें हैं, जो स्कोलास और करंतिस आंदोलन द्वारा यूनिवर्सिटी एवं रिसर्चर को जोड़ती हैं, इस हफ्ते इंडोनेशिया में अपने 11वीं इंटरनेशनल कांग्रेस की मेजबानी कर रही हैं। 4 से 6 सितंबर तक चलने वाली 3 दिनों की कांग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मानव संवेदना के सवाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
1: जिबूती के धर्माध्यक्ष और सोमालिया के प्रेरितिक प्रशासक धर्माध्यक्ष जमाल डेब्स ने पवित्र भूमि में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक दबाव बनाने की अपील की, ताकि वे सम्मान, आजादी और सुरक्षा के साथ अपने देश में रह सकें। अरब इलाकों के लैटिन धर्माध्यक्षों के साथ शुक्रवार 4 सितंबर को संत पापा लियो 14वें से मिलने के बाद रोम में वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि डर और हिंसा फिलिस्तीनियों को उस जमीन को छोड़ने पर मजबूर कर रही है जहां ख्रिस्तीय कलीसिया की शुरुआती दिनों से रह रहे हैं। धर्माध्यक्ष डेब्स के लिए पवित्र भूमि में लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक दावों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। वे कहते हैं कि इसके केंद्र में यह है कि क्या लोग अपने देश में रह सकते हैं और वहां गरिमा, सुरक्षा और आज़ादी के साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी ख्रिस्तीय व्यापक फिलिस्तीनी आबादी के साथ पीड़ित है, लेकिन ख्रिस्तीय गांवों और कस्बों पर हाल के हमलों ने एक नया आयाम जोड़ा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ख्रिस्तीय अन्य सभी फिलिस्तीनियों की तरह कब्जे के तहत पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का मकसद डर पैदा करना और अंत में लोगों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करना है। उन्होंने कलीसिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की, हमें कलीसियाओं की एकता, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकता की जरूरत है और दबाव बनाने की जरूरत है ताकि यह रुक जाए। धर्माध्यक्ष डेब्स के लिए संत पापा लियो 14वें के साथ मीटिंग की सबसे जरूरी बातों में से एक यह थी कि उन्हें सीधे उनसे यह सुनने को मिला कि इस इलाके में रहने वाले ख्रिस्तीय अकेले नहीं हैं। उन्होंने हमें वापस जाने और अपने साथ सुसमाचार और अपने लोगों के लिए उम्मीद लेकर चलने का प्रोत्साहन दिया। उधर नेपाल में एक हफ्ते से ज्यादा समय बाद मरने वालों की संख्या लगभग 1,300 हो गई है और 5,600 से ज्यादा लोग लापता हैं और करीब 900 मजदूर अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक टनल में फंसे हुए हैं। नेपाली सेना ने बताया कि आज शनिवार को अपर त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट के ऑडिट 4 सुरंग में एक चीनी कर्मचारी को बचा लिया गया। नेपाल सेना ने बताया कि वह 225 मीटर लंबी सुरंग के अंदर पाए गए। शुक्रवार 4 सितंबर को रासुआगढ़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की अंडरग्राउंड टनल से दो लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया। काठमांडू हॉस्पिटल ले जाने से पहले उस व्यक्ति ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि वहां और भी लोग जिंदा हैं। अभी तक सिर्फ एक बॉडी मिली है, फिर भी उस एक टनल से कम 39 और मजदूरों को बचाने की उम्मीद है। अब तक 10,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है, जिनमें 252 विदेशी नागरिक शामिल हैं। जैसे जैसे तबाह हुए गांवों में जिंदा लोगों के मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है, सैकड़ों हिंदू परिवारों ने प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया है। पुजारी पुआल की मूर्तियां रखते हैं और आग जलाते हैं। यह रस्म उनके लापता रिश्तेदारों की आत्मा को शांति देने की उम्मीद में की जाती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
0: प्रेरितों का धर्मसार
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: अमृत को न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु येसु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
2: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके, आमेन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन में रहने वाले सिस्टर लीजी पया पिल्ली का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। हम हर दिन डरते हुए सोते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि मिसाइल या ड्रोन कब आ जाएंगे। हर सुबह हम जागने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और हर शाम हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जिंदा बच गए। ये थे सिस्टर लीजी पया पिल्ले के शब्द, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे 21वीं सदी में भी दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाने वाले दृश्य देखेंगी। संत जोसेफ ऑफ सेंट मार्क की धर्मबहन सिस्टर लीजी पया पिल्ले असल में भारत की हैं, लेकिन लगभग 25 साल पहले अपने मिशन के लिए यूक्रेन आई थी। वे यूक्रेनी लोगों के साथ पूरी तरह घुल मिल गई हैं। ट्रांसकार्पेथिनिया के पाओशिनो गांव में सिस्टर लीजी अपने धम्मसंघ के मठ में आध्यात्मिक बातचीत और मध्यस्थ प्रार्थना के लिए लोगों का स्वागत करती हैं। अपनी प्रार्थना के लिए लोकप्रिय सिस्टर लीजी को पूरे यूक्रेन में कैथोलिक और गैर कैथोलिक दोनों तरह के श्रद्धालु जानते हैं। समय समय पर वे यूक्रेन की दूसरे पलियों और विदेशों में भी जाती हैं, जहां उन्हें आध्यात्मिक साधना का संचालन करने के लिए बुलाया जाता है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में सिस्टर लीजी ने हमले के खिलाफ अपने देश की रक्षा में प्रार्थना के महत्व पर चिंतन किया और युद्ध से जूझ रहे देश में सच्ची आजादी के अर्थ पर प्रकाश डाला। अपनी प्रेरिता के बारे बतलाते हुए सिस्टर लीजी अपने धर्मसंघ के करिश्मे की ठोस अभिव्यक्ति पर जोर देती हैं कि वह पौत्र यूखरिस्त की आराधना और सुसमाचार प्रचार है। सिस्टर लीजी कहती हैं, जब मैं आराधना में समय व्यतीत करती हूँ तो मैं यूखरिस्त के लिए अपना स्नेह प्रकट करती हूँ और चाहती हूँ कि दूसरे भी इससे प्यार करें और इसका स्वागत करें। उनका मिशन ईश्वर की जीवित उपस्थिति के उनके व्यक्तिगत साक्ष्य में निहित है। वे कहती हैं, मैं अपने अनुभव के द्वारा सुसमाचार प्रचार करती हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन का स्पर्श किया है और मेरे लिए वे जीवित हैं। यूखरिस्त हमारे बीच ईश्वर की उपस्थिति है और मैं इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि ट्रांसकार्पेथिनिया के पाओशिनो में मठ उनकी प्रेरिताई के

वे ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, या ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हो गई हैं। हमारे लिए यह हमारी सेवा का एक कीमती पहलू है। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें दिलासा देने, सहारा देने और उनके लिए प्रार्थना करने का मौका। अग्रिम पंक्ति पर रहने वालों के बलिदान को समझने की इच्छा से सिस्टर लीजी ट्रांसकार्पेथिया छोड़कर युद्ध से अधिक प्रभावित इलाकों में जाना चाहें। 2016 में उनका मिशन उन्हें मारियोपोल और डोनेस्क ले गया, जहां 2022 में रूस के बड़े पैमाने पर हमले की शुरुआत के बाद से वे पीड़ित लोगों के जख्मों को खुद देखने की आवश्यकता महसूस की। बम के नीचे रहने वालों और सिर्फ दूर से प्रार्थना करने वालों के बीच की दूरी को कम करने के लिए टेलीविजन की तस्वीरें अब काफी नहीं थी। देश के उत्तर में सुमी में और बाद में दक्षिण पूर्व में जापोरिजा में बिशप जॉन सोविलो के बुलावे पर धम बहनने वह देखा जो अक्सर मीडिया कवरेज से बच जाता है। हजारों लोग ब्रेड का एक टुकड़ा और खाने का एक डिब्बा पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। सिस्टर लेजी की कहानी तब और दर्दनाक हो जाती है जब वे उन लोगों की बातें याद करती हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। लोग उन्हें बताते हुए कहते हैं, हमारे पास जमीन थी, हमारे पास एक घर था, हमने कभी नहीं सोचा था कि जीवन हमें रोटी के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। निप्रो में रहने के दौरान सिस्टर लेजी ने विश्वासियों के दैनिक जीवन में शामिल होने का फैसला किया और उनके साथ गुजरते ड्रोन और मिसाइलों के होने वाले डर का अनुभव करने की कोशिश की। मिलिट्री अस्पताल का दौरा करते हुए सिस्टर लीजी बहुत दुखी हुई। वे कहती हैं, सच कहूं तो मैं चुप रह गई। जो कुछ मैंने देखा उसके सामने मेरे पास शब्द नहीं थे। उनके सामने ऐसे जवान युवक थे, शायद 35 या 40 साल के, जिन्हें नकली अंगों के सहारे चलने सीखना पड़ा या ऐसे हाथ से पकड़ना पड़ा जो उनके नहीं थे। सिस्टर समझ गई कि उन्होंने अपने पैर और हाथ खो दिए हैं। खेरसोन में एक भी घर सही सलामत नहीं बचा है। सिस्टर लीजी यूक्रेन के असली हीरो से मिली। सुनसान सड़कों पर ड्रोन का खतरा हमेशा बना रहता है। दम्बन बताती हैं कि जब वे मिस्सा में भाग ले रहे थे तो इतने कम समय में 20 ड्रोन उनके ऊपर से उड़े। पल्ली पुरोहित फादर मैक्सिम ने उनसे बचने के उपाय समझाए। जब आप ड्रोन देखें तो आपको पेड़ के नीचे भागना होगा, क्योंकि वे लोगों का पता लगाने के लिए कैमरों का इस्तेमाल करते हैं और छोटे विस्फोटक या बम गिराते हैं। लेकिन आपको पेड़ों के नीचे भी सावधान रहना होगा। एक खतरनाक बम पत्तियों के बीच या किसी छोड़े हुए बैग के अंदर छिपा हो सकता है। तनाव और पानी की कमी के बावजूद सिस्टर लीजी कहती हैं वे लोगों के जोश से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उम्मीद थी कि वहां रहने वाले लोग शिकायतें करेंगे और निराश होंगे, लेकिन इसके बजाय उन्हें ईश्वर का शुक्रिया अदा करते देख वे कहती हैं, हमारी ताकत प्रार्थना है। हमें नहीं पता कि कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन हम जीते हैं और हम एक यूक्रेनी के रूप में बनना चाहते हैं। जब पूछा गया कि इतने खतरनाक माहौल में भी आध्यात्मिकता और प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, तो सिस्टर लीजी ने धर्म ग्रंथ का जिक्र करते हुए कहा, जैसा कि संत पॉलुस ने एफेसियों को लिखे पत्र में लिखा है, हमारी लड़ाई खून पसीने के खिलाफ नहीं बल्कि बुरी आत्माओं के खिलाफ है। अंधेरा अपने आप में मौजूद नहीं है, यह बस रोशनी का नहीं होना है। युद्ध से जुड़ी हर चीजें, नफरत, हत्या, तबाही और गुस्सा एक बुरी आत्मा का फल है। जो लोग इस तरह काम करते हैं वे इसके साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए प्रार्थना यूक्रेनी लोगों के अंदर विरोध के लिए सबसे अहम हथियार है। यीशु ने पहले ही दुनिया जीत ली है, लेकिन बुरी आत्मा हमें यह यकीन दिलाकर धोखा देने की कोशिश करती है कि उसके पास समाप्त करने की ताकत है। असल में ताकत सिर्फ ख्रिस्त की है, ताकि हम पवित्र आत्मा को अपने द्वारा काम करने दे सकें। श्रोताओं, रवि फारे कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन में रह रही सिस्टर लीजी पया पिल्ले का अनुभव सुन रहे थे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका अति आत्मविश्वास। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, हम सभी का जीवन एक बहती नदी के समान है। जीवन रूपी नदी हमेशा एक ही स्पीड में नहीं बहती, कभी धीमी तो कभी तेज बहाव रहते हैं। एक सफल इंसान वह होता है जो जीवन की गति को पहचानता है और उसी के अनुसार खुद को आगे बढ़ाता है ताकि सफलता हासिल की जा सके। और सफलता का मूल मंत्र है आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर किसी में अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस हो तो यह बहुत घातक और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त कर देने वाला होता है। कोई व्यक्ति अति आत्मविश्वास का शिकार है तो इसे हम इन बातों से पता लगा सकते हैं। अति आत्मविश्वासी समझता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सही गलत में फर्क नहीं कर पाता, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। वह सोचता है कि वह गलत हो ही नहीं सकता और गलत कार्यों को सही मानकर करता चला जाता है और असफलता ही उसके हाथ लगती है। इस असफलता की जिम्मेदारी वह खुद पर नहीं लेता बल्कि इसका दोष किसी और पर मढ़ देता है। ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास में से अति को निकालने के लिए परिवार वालों, सच्चे मित्रों का मार्गदर्शन चाहिए जो उसे चुनौती दे सकें और धीरे से वह अपनी असफलताओं से सीखकर अति को जीवन से निकाल सकता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका अति आत्मविश्वास।
1: अगले महीने याद है ना, बिट्टू की शादी में चलना है।
2: अगला महीना तो आने दो, फिर देखेंगे जाना भी है या नहीं।
1: अरे कैसी बातें करते हैं आप भी, मैं किसी पराए की शादी की बात कर रही हूँ क्या? आखिर मेरे जेठ और आपके बड़े भाई का बेटा है बिट्टू, बिट्टू की शादी की बात कर रही थी।
2: ठीक है होने तो दो, चलेंगे।
3: हाँ पापा जरूर चलेंगे, खूब मजा आएगा। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि अपने परिवार में किसी की शादी नहीं निकल रही है, अब बिट्टू भैया की शादी निकली है तो खूब मजा करेंगे।
1: देखो ना, देखते देखते ही आज बिट्टू शादी के लायक हो गया है, एक कंपनी में मैनेजर भी हो गया है।
2: मगर एक हमारे रवि को देख लो तुम, क्या कर पाया आज तक वह, पढ़ लिख कर भी, उसे आज तक एक ढंग की नौकरी भी नहीं मिली।
3: पापा परसों फिर उसका एक जगह इंटरव्यू है।
1: हाँ मुझसे भी कह तो रहा था कि कहीं पर उसका इंटरव्यू है,
2: मगर मुझे तो बताया नहीं उसने।
3: भैया सोचता होगा कि शायद जब सिलेक्शन हो जाएगा तब फाइनल ही बताएगा।
1: मगर फिर भी मीनल, उसे तुम्हारे पापा को तो बताना ही चाहिए था ना।
2: चलो नीता, उसने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मगर इंटरव्यू के लिए उसकी तैयारी वगैरह तो चल रही है ना।
1: कर तो रहा होगा तैयारी।
3: कोई नहीं मम्मी, भैया कह रहा था कि वो कोई तैयारी नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर के जॉब की भी क्या तैयारी करना, ऐसे ही कुछ।
1: अरे फिर भी कुछ तैयारी तो उसे करनी चाहिए ना।
2: बिल्कुल करना चाहिए, वरना वहाँ उससे कुछ पूछा जाएगा तो क्या बगले झांकेगा वो।
3: भैया का कहना है कि उसे आइडिया है कि वे लोग उससे क्या क्या पूछेंगे और उसे सब कुछ आता है।
1: अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस,
2: अति आत्मविश्वास। नीता हमारे बेटे में इतना अधिक आत्मविश्वास अच्छा नहीं है।
3: मैंने भी भैया से यही कहा था पापा, लेकिन उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहने लगा कि मैं इतना गया बीता नहीं हूँ, मैं भी नॉलेज रखता हूँ। सचमुच पापा, भैया बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है।
2: शायद उसे पता नहीं बेटा कि ऐसे लोग जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनका अति आत्मविश्वास ही उनको ले डूबता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, रवि बेटे को कुछ तो तैयारी करनी ही चाहिए। कहाँ है वो?
3: मम्मा वो उसका कोई फ्रेंड आया था, उसी के साथ कहीं गया है।
1: इस लड़के ने तो हद कर दी भाई, नौकरी क्या ऐसे ही मिल जाती है क्या?
2: इसी से पता चलता है कि हमारे बेटे को नौकरी करने और उसे पाने की कितनी लगन है।
3: सही है पापा, भैया हर इंटरव्यू कॉल को बहुत ही राइटली ले लेता है, हर बार यही कहता है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और अपने ऊपर, ये नौकरी मुझे ही मिलेगी।
1: और मिलता क्या है उस लड़के को?
2: मैंने कहा तो है कि उस जैसे अति आत्मविश्वास वाले को कुछ भी नहीं मिला करता। वो आए तो उससे कहना मुझसे बातें करे।
1: एक तो वो घर में टिकता भी नहीं।
2: किसी भी हालत में घर तो आएगा। शाम हो गई, रवि अब तक नहीं आया या अपने कमरे में सो रहा?
3: अभी तक तो नहीं आया पापा।
2: ये लड़का भी आवारा हो गया लगता है औरों की तरह।
3: पापा भैया आ रहा है।
2: रुको रवि, बैठो यहाँ।
4: कहिए पापा।
1: क्यों बेटा, तुमने पापा को नहीं बताया कि परसों तुम्हारा इंटरव्यू है?
4: अब उसमें बताने जैसा क्या है मम्मी, नौकरी मिल जाएगी तो खुद ही बता दूंगा ना।
2: मगर इंटरव्यू भी तो नौकरी पाने की पहली सीढ़ी है ना बेटा, तो फिर
4: इंटरव्यू का क्या है पापा, अब तक कितने तो इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे अब तो इंटरव्यू देने का।
2: अब तक तुम सिर्फ इंटरव्यू देने का ही अनुभव जमा करते रहे हो, कभी नौकरी पा लेने का अनुभव भी हुआ है तुम्हें?
4: नौकरी पाने का अनुभव तो नौकरी पाकर ही होगा ना पापा।
2: और नौकरी मिलती है इंटरव्यू की तैयारी करने से।
4: अब नौकरी के इंटरव्यू की क्या तैयारी करूं पापा, कितने तो इंटरव्यू दे चुका हूं मैं, सब एक जैसा ही पूछते हैं।
2: कभी कभी अलग भी पूछा जाता है, क्योंकि कंपनी और लोग अलग होते हैं, वे अपनी कंपनी या उससे जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं।
4: पापा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं तैयारी कर लेता हूँ, वैसे भी इंटरव्यू परसों है।
1: जा बेटा आराम से तैयारी कर। देखो अब तो गुस्सा थूक दो, कह रहा है कर लेगा तैयारी।
2: वो तुम्हें बहला सकता है, मुझे नहीं। रवि कहाँ है नीता?
3: भैया मुंह धोकर आ रहा है।
1: इस लड़की ने उस दिन इंटरव्यू में क्या हुआ बताया ही नहीं।
2: वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ।
1: हाँ बेटा, उस दिन कैसा रहा इंटरव्यू?
2: अच्छा ही रहा होगा, इसे ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही।
4: सॉरी पापा, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा।
2: क्यों क्यों अच्छा नहीं रहा तुम्हारा इंटरव्यू? तुमने तो मेरे कहे अनुसार तैयारी भी खूब की होगी, नहीं क्या?
4: नहीं पापा, मैंने आपको टालने के लिए आपको झूठ कहा था, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी।
1: तो फिर पापा से झूठ बोलने का कारण?
3: वही हतिया आत्मविश्वास।
4: हाँ पापा, काश मैं आपकी बात मान लेता और अपने अति आत्मविश्वास में न होता तो जरूर मेरा भी सिलेक्शन हो जाता पापा।
2: तुम्हारे साथ आए उम्मीदवारों ने तो तैयारी की थी या वे भी तुम्हारी तरह ही अति आत्मविश्वास से भरे हुए थे?
4: नहीं पापा, उनमें से लगभग सभी ने इंटरव्यू देने की पूर्ण तैयारी कर रखी थी।
2: देखो बेटा, अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि मैं गलत नहीं कह रहा था, अति आत्मविश्वास हमेशा व्यक्ति को ले डूबता है।
1: हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, क्योंकि अति आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं करता और ना ही करना चाहता है, क्योंकि उसे तो ये गुमान होता है कि मुझे कुछ भी पहले से करने की क्या जरूरत है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ।
2: बेटा, जीवन में आत्मविश्वास का होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास का होना किसी भूल में रहना ही कहा जाएगा।
3: सुन लिया भैया?
4: मुझे इंटरव्यू में अपनी नाकामी से अच्छा सबक मिल गया है पापा। अब मैंने आज के बाद यह ठान लिया है कि आत्मविश्वास बनाए रखूंगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से हमेशा दूर रहूंगा। अपनी नाकामी से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है।
2: इसी को कहते हैं बेटा, जब जागे तब सवेरा।
0: अति आत्मविश्वास। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे आस्था उपमन्यु, पीटर जमरा, अंतरा करवड़े और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन में रहने वाले सिस्टर लीजी पया पिल्ली का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। हम हर दिन डरते हुए सोते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि मिसाइल या ड्रोन कब आ जाएंगे। हर सुबह हम जागने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और हर शाम हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जिंदा बच गए। ये थे सिस्टर लीजी पया पिल्ले के शब्द, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे 21वीं सदी में भी दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाने वाले दृश्य देखेंगी। सेंट जोसेफ ऑफ सेंट मार्क की धर्मबहन सिस्टर लीजी पया पिल्ली असल में भारत की हैं, लेकिन लगभग 25 साल पहले अपने मिशन के लिए यूक्रेन आई थी। वे यूक्रेनी लोगों के साथ पूरी तरह घुल मिल गई हैं। ट्रांसकार्पेथिनिया के पाओशिनो गांव में सिस्टर लीजी अपने धम्मसंघ के मठ में आध्यात्मिक बातचीत और मध्यस्थ प्रार्थना के लिए लोगों का स्वागत करती हैं। अपनी प्रार्थना के लिए लोकप्रिय सिस्टर लीजी को पूरे यूक्रेन में कैथोलिक और गैर कैथोलिक दोनों तरह के श्रद्धालु जानते हैं। समय समय पर वे यूक्रेन की दूसरे पलियों और विदेशों में भी जाती हैं, जहां उन्हें आध्यात्मिक साधना का संचालन करने के लिए बुलाया जाता है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में सिस्टर लीजी ने हमले के खिलाफ अपने देश की रक्षा में प्रार्थना के महत्व पर चिंतन किया और युद्ध से जूझ रहे देश में सच्ची आजादी के अर्थ पर प्रकाश डाला। अपनी प्रेरिता के बारे बतलाते हुए सिस्टर लीजी अपने धर्मसंघ के करिश्मे की ठोस अभिव्यक्ति पर जोर देती हैं कि वह पौत्र यूखरिस्त की आराधना और सुसमाचार प्रचार है। सिस्टर लीजी कहती हैं, जब मैं आराधना में समय व्यतीत करती हूँ तो मैं यूखरिस्त के लिए अपना स्नेह प्रकट करती हूँ और चाहती हूँ कि दूसरे भी इससे प्यार करें और इसका स्वागत करें। उनका मिशन ईश्वर की जीवित उपस्थिति के उनके व्यक्तिगत साक्ष्य में निहित है। वे कहती हैं, मैं अपने अनुभव के द्वारा सुसमाचार प्रचार करती हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन का स्पर्श किया है और मेरे लिए वे जीवित हैं। यूखरिस्त हमारे बीच ईश्वर की उपस्थिति है और मैं इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि ट्रांसकार्पेथिनिया के पाओशिनो में मठ उनकी प्रेरिताई के मूल संदर्भ बिंदु हैं, लेकिन सिस्टर का काम कॉन्वेंट से कहीं आगे तक फैला हुआ है। आध्यात्मिक सलाह लेने वाले हजारों भक्तों को जगह ना दे पाने की वजह से सिस्टर लीजी को पलियों से मिले बुलावे पर पूरे यूक्रेन एवं विदेश में भी घूमना पड़ता है। महामारी से पहले मठ में एक ही दिन में 700 तक लोग आते थे। आज आगंतुकों के आने जाने को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए एक अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे सिस्टर हफ्ते में 3 दिन भक्तों को समय और ध्यान दे पाती हैं। सिस्टर लीजी कहती हैं, युद्ध के दौरान अब मठ के दरवाजे पर दस्तक देने वालों के चेहरे बदल गए हैं। हाल में जो लोग आ रहे हैं वे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य गायब हैं। वे ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है या ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हो गई हैं। हमारे लिए यह हमारी सेवा का एक कीमती पहलू है। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें दिलासा देने, सहारा देने और उनके लिए प्रार्थना करने का मौका। अग्रिम पंक्ति पर रहने वालों के बलिदान को समझने की इच्छा से सिस्टर लीजी ट्रांसकार्पेथिया छोड़कर युद्ध से अधिक प्रभावित इलाकों में जाना चाहें। 2016 में उनका मिशन उन्हें मारियोपोल और डोनेस्क ले गया। जहां 2022 में रूस के बड़े पैमाने पर हमले की शुरुआत के बाद से वे पीड़ित लोगों के जख्मों को खुद देखने की आवश्यकता महसूस की। बम के नीचे रहने वालों और सिर्फ दूर से प्रार्थना करने वालों के बीच की दूरी को कम करने के लिए टेलीविजन की तस्वीरें अब काफी नहीं थी। देश के उत्तर में सुमी में और बाद में दक्षिण पूर्व में जापोरिजा में बिशप जॉन सोविलो के बुलावे पर धम्मबहन ने वह देखा जो अक्सर मीडिया कवरेज से बच जाता है। हजारों लोग ब्रेड का एक टुकड़ा और खाने का एक डिब्बा पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। सिस्टर लेजी की कहानी तब और दर्दनाक हो जाती है जब वे उन लोगों की बातें याद करती हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। लोग उन्हें बताते हुए कहते हैं, हमारे पास जमीन थी, हमारे पास एक घर था, हमने कभी नहीं सोचा था कि जीवन हमें रोटी के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। निप्रो में रहने के दौरान सिस्टर लेजी ने विश्वासियों के दैनिक जीवन में शामिल होने का फैसला किया और उनके साथ गुजरते ड्रोन और मिसाइलों के होने वाले डर का अनुभव करने की कोशिश की। मिलिट्री अस्पताल का दौरा करते हुए सिस्टर लेजी बहुत दुखी हुई। वे कहती हैं, सच कहूं तो मैं चुप रह गई। जो कुछ मैंने देखा उसके सामने मेरे पास शब्द नहीं थे। उनके सामने ऐसे जवान युवक थे, शायद 35 या 40 साल के, जिन्हें नकली अंगों के सहारे चलने सीखना पड़ा या ऐसे हाथ से पकड़ना पड़ा जो उनके नहीं थे। सिस्टर समझ गई कि उन्होंने अपने पैर और हाथ खो दिए हैं। खेरसोन में एक भी घर सही सलामत नहीं बचा है। सिस्टर लेजी यूक्रेन के असली हीरो से मिले। सुनसान सड़कों पर ड्रोन का खतरा हमेशा बना रहता है। धम्मबहन बताती हैं कि जब वे मिस्सा में भाग ले रहे थे तो इतने कम समय में 20 ड्रोन उनके ऊपर से उड़े। पल्ली पुरोहित फादर मैक्सिम ने उनसे बचने के उपाय समझाए। जब आप ड्रोन देखें तो आपको पेड़ के नीचे भागना होगा, क्योंकि वे लोगों का पता लगाने के लिए कैमरों का इस्तेमाल करते हैं और छोटे विस्फोटक या बम गिराते हैं। लेकिन आपको पेड़ों के नीचे भी सावधान रहना होगा। एक खतरनाक बम पत्तियों के बीच या किसी छोड़े हुए बैग के अंदर छिपा हो सकता है। तनाव और पानी की कमी के बावजूद सिस्टर लेजी कहती हैं, वे लोगों के जोश से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उम्मीद थी कि वहां रहने वाले लोग शिकायतें करेंगे और निराश होंगे, लेकिन इसके बजाय उन्हें ईश्वर का शुक्रिया अदा करते देख वे कहती हैं, हमारी ताकत प्रार्थना है। हमें नहीं पता कि कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन हम जीते हैं और हम एक यूक्रेनी के रूप में बनना चाहते हैं। जब पूछा गया कि इतने खतरनाक माहौल में भी आध्यात्मिकता और प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, तो सिस्टर लेजी ने धर्म ग्रंथ का जिक्र करते हुए कहा, जैसा कि संत पॉलुस ने एफेसियों को लिखे पत्र में लिखा है, हमारी लड़ाई खून पसीने के खिलाफ नहीं बल्कि बुरी आत्माओं के खिलाफ है। अंधेरा अपने आप में मौजूद नहीं है, यह बस रोशनी का नहीं होना है। युद्ध से जुड़ी हर चीजें, नफरत, हत्या, तबाही और गुस्सा एक बुरी आत्मा का फल है। जो लोग इस तरह काम करते हैं वे इसके साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए प्रार्थना यूक्रेनी लोगों के अंदर विरोध के लिए सबसे अहम हथियार है। यीशु ने पहले ही दुनिया जीत ली है, लेकिन बुरी आत्मा हमें यह यकीन दिलाकर धोखा देने की कोशिश करती है कि उसके पास समाप्त करने की ताकत है। असल में ताकत सिर्फ ख्रिस्त की है, ताकि हम पवित्र आत्मा को अपने द्वारा काम करने दे सकें। श्रोताओं, रवि फारे कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन में रह रहे सिस्टर लेजी पया पिल्ले का अनुभव सुन रहे थे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका अति आत्मविश्वास। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, हम सभी का जीवन एक बहती नदी के समान है। जीवन रूपी नदी हमेशा एक ही स्पीड में नहीं बहती, कभी धीमी तो कभी तेज बहाव रहते हैं। एक सफल इंसान वह होता है जो जीवन की गति को पहचानता है और उसी के अनुसार खुद को आगे बढ़ाता है ताकि सफलता हासिल की जा सके। और सफलता का मूल मंत्र है आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर किसी में अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस हो तो यह बहुत घातक और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त कर देने वाला होता है। कोई व्यक्ति अति आत्मविश्वास का शिकार है तो इसे हम इन बातों से पता लगा सकते हैं। अति आत्मविश्वासी समझता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सही गलत में फर्क नहीं कर पाता, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। वह सोचता है कि वह गलत हो ही नहीं सकता और गलत कार्यों को सही मानकर करता चला जाता है और असफलता ही उसके हाथ लगती है। इस असफलता की जिम्मेदारी वह खुद पर नहीं लेता बल्कि इसका दोष किसी और पर मढ़ देता है। ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास में से अति को निकालने के लिए परिवार वालों, सच्चे मित्रों का मार्गदर्शन चाहिए जो उसे चुनौती दे सकें, और धीरे से वह अपनी असफलताओं से सीखकर अति को जीवन से निकाल सकता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका अति आत्मविश्वास।
1: अगले महीने याद है ना, बिट्टू की शादी में चलना है।
2: अगला महीना तो आने दो, फिर देखेंगे जाना भी है या नहीं।
1: अरे कैसी बातें करते हैं आप भी, मैं किसी पराए की शादी की बात कर रही हूँ क्या? आखिर मेरे जेठ और आपके बड़े भाई का बेटा है बिट्टू, बिट्टू की शादी की बात कर रही थी।
2: ठीक है होने तो दो, चलेंगे।
3: हाँ पापा जरूर चलेंगे, खूब मजा आएगा। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि अपने परिवार में किसी की शादी नहीं निकल रही है, अब बिट्टू भैया की शादी निकली है तो खूब मजा करेंगे।
1: देखो ना, देखते देखते ही आज बिट्टू शादी के लायक हो गया है, एक कंपनी में मैनेजर भी हो गया है।
2: मगर एक हमारे रवि को देख लो तुम, क्या कर पाया आज तक वह, पढ़ लिख कर भी, उसे आज तक एक ढंग की नौकरी भी नहीं मिली।
3: पापा परसों फिर उसका एक जगह इंटरव्यू है।
1: हाँ मुझसे भी कह तो रहा था कि कहीं पर उसका इंटरव्यू है,
2: मगर मुझे तो बताया नहीं उसने।
3: भैया सोचता होगा कि शायद जब सिलेक्शन हो जाएगा तब फाइनल ही बताएगा।
1: मगर फिर भी मीनल, उसे तुम्हारे पापा को तो बताना ही चाहिए था ना।
2: चलो नीता, उसने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मगर इंटरव्यू के लिए उसकी तैयारी वगैरह तो चल रही है ना।
1: कर तो रहा होगा तैयारी।
3: कोई नहीं मम्मी, भैया कह रहा था कि वो कोई तैयारी नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर के जॉब की भी क्या तैयारी करना, ऐसे ही कुछ।
1: अरे फिर भी कुछ तैयारी तो उसे करनी चाहिए ना।
2: बिल्कुल करना चाहिए, वरना वहाँ उससे कुछ पूछा जाएगा तो क्या बगले झांकेगा वो।
3: भैया का कहना है कि उसे आइडिया है कि वे लोग उससे क्या क्या पूछेंगे और उसे सब कुछ आता है।
1: अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस,
2: अति आत्मविश्वास। नीता हमारे बेटे में इतना अधिक आत्मविश्वास अच्छा नहीं है।
3: मैंने भी भैया से यही कहा था पापा, लेकिन उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहने लगा कि मैं इतना गया बीता नहीं हूँ, मैं भी नॉलेज रखता हूँ। सचमुच पापा, भैया बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है।
2: शायद उसे पता नहीं बेटा कि ऐसे लोग जीवन में कहीं भी नहीं पहुँच पाते हैं, उनका अति आत्मविश्वास ही उनको ले डूबता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, रवि बेटे को कुछ तो तैयारी करनी ही चाहिए। कहाँ है वो?
3: मम्मा वो उसका कोई फ्रेंड आया था, उसी के साथ कहीं गया है।
1: इस लड़के ने तो हद कर दी भाई, नौकरी क्या ऐसे ही मिल जाती है क्या?
2: इसी से पता चलता है कि हमारे बेटे को नौकरी करने और उसे पाने की कितनी लगन है।
3: सही है पापा, भैया हर इंटरव्यू कॉल को बहुत ही राइटली ले लेता है, हर बार यही कहता है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और अपने ऊपर, ये नौकरी मुझे ही मिलेगी।
1: और मिलता क्या है उस लड़के को?
2: मैंने कहा तो है कि उस जैसे अति आत्मविश्वास वाले को कुछ भी नहीं मिला करता। वो आए तो उससे कहना मुझसे बातें करे।
1: एक तो वो घर में टिकता भी नहीं।
2: किसी भी हालत में घर तो आएगा। शाम हो गई, रवि अब तक नहीं आया या अपने कमरे में सो रहा?
3: अभी तक तो नहीं आया पापा।
2: ये लड़का भी आवारा हो गया लगता है औरों की तरह।
3: पापा, भैया आ रहा है।
2: रुको रवि, बैठो यहाँ।
4: कहिए पापा।
1: क्यों बेटा, तुमने पापा को नहीं बताया कि परसों तुम्हारा इंटरव्यू है?
4: अब उसमें बताने जैसा क्या है मम्मी, नौकरी मिल जाएगी तो खुद ही बता दूंगा ना।
2: मगर इंटरव्यू भी तो नौकरी पाने की पहली सीढ़ी है ना बेटा, तो फिर
4: इंटरव्यू का क्या है पापा? अब तक कितने तो इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे अब तो इंटरव्यू देने का।
2: अब तक तुम सिर्फ इंटरव्यू देने का ही अनुभव जमा करते रहे हो, कभी नौकरी पा लेने का अनुभव भी हुआ है तुम्हें?
4: नौकरी पाने का अनुभव तो नौकरी पाकर ही होगा ना पापा।
2: और नौकरी मिलती है इंटरव्यू की तैयारी करने से।
4: अब नौकरी के इंटरव्यू की क्या तैयारी करूं पापा, कितने तो इंटरव्यू दे चुका हूं मैं, सब एक जैसा ही पूछते हैं।
2: कभी कभी अलग भी पूछा जाता है, क्योंकि कंपनी और लोग अलग होते हैं, वे अपनी कंपनी या उससे जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं।
4: पापा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं तैयारी कर लेता हूँ, वैसे भी इंटरव्यू परसों है।
1: जा बेटा, आराम से तैयारी कर। देखो अब तो गुस्सा थूक दो, कह रहा है कर लेगा तैयारी।
2: वो तुम्हें बहला सकता है, मुझे नहीं। रवि कहाँ है नीता?
3: भैया मुंह धोकर आ रहा है।
1: इस लड़की ने उस दिन इंटरव्यू में क्या हुआ बताया ही नहीं।
2: वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ।
1: हाँ बेटा, उस दिन कैसा रहा इंटरव्यू?
2: अच्छा ही रहा होगा, इसे ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही।
4: सॉरी पापा, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा।
2: क्यों क्यों अच्छा नहीं रहा तुम्हारा इंटरव्यू? तुमने तो मेरे कहे अनुसार तैयारी भी खूब की होगी, नहीं क्या?
4: नहीं पापा, मैंने आपको टालने के लिए आपको झूठ कहा था, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी।
1: तो फिर पापा से झूठ बोलने का कारण?
3: वही अति आत्मविश्वास।
4: हाँ पापा, काश मैं आपकी बात मान लेता और अपने अति आत्मविश्वास में न होता तो जरूर मेरा भी सिलेक्शन हो जाता पापा।
2: तुम्हारे साथ आए उम्मीदवारों ने तो तैयारी की थी या वे भी तुम्हारी तरह ही अति आत्मविश्वास से भरे हुए थे?
4: नहीं पापा, उनमें से लगभग सभी ने इंटरव्यू देने की पूर्ण तैयारी कर रखी थी।
2: देखो बेटा, अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि मैं गलत नहीं कह रहा था, अति आत्मविश्वास हमेशा व्यक्ति को ले डूबता है।
1: हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, क्योंकि अति आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं करता और ना ही करना चाहता है, क्योंकि उसे तो ये गुमान होता है कि मुझे कुछ भी पहले से करने की क्या जरूरत है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ।
2: बेटा, जीवन में आत्मविश्वास का होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास का होना किसी भूल में रहना ही कहा जाएगा।
3: सुन लिया भैया?
4: मुझे इंटरव्यू में अपनी नाकामी से अच्छा सबक मिल गया है पापा। अब मैंने आज के बाद यह ठान लिया है कि आत्मविश्वास बनाए रखूंगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से हमेशा दूर रहूंगा। अपनी नाकामी से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है।
2: इसी को कहते हैं बेटा, जब जागे तब सवेरा।
0: अति आत्मविश्वास। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे आस्था उपमन्यु, पीटर जमरा, अंतरा करवड़े और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।